आया है, कोशिश करनी है कि वध तो वध पूरे टिकाओ दे नाल ध्यान दे नाल आपां सिमरन दे विच हाजरियां भरनियां हन। सरवणी सुनीए, रसना गाइए, हिरदै ध्याइए सोई। रसना नाल गुरमंत्र दा जाप करना, करना नाल अपनी आवाज़ नूं सुनना, प्रेम श्रद्धा भावना दे नाल आओ सारिया ने रल मिल के हाजरियां भरनियां। आपो अपने नेत्र बंद कर लैने ताकि वाधू फुरने होर ना आउण। वध तो वध अपनी आवाज़ नूं सुन के आओ सारे रल मिल के वाहिगुरु गुरमंत्र दे विच हाजरियां भरीए। जो सतगुरु जी सानू बख्शिश करते हैं, जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावै। सो एक बाणी की पंक्ति नाल शुरू करके फिर आप वाहिगुरु गुरमंत्र जपण दे विच सारिया ने जुड़ना।

जान लियो मन माई अपने सुख सियों ही जग फांदिया को काहू को नाही रहा सुखमय आन बहुत मिल बैठरा रहत चौद सके विपत परी सभी संग छाडता कऊ न आवत नेरा कर की नार बहुते तुचास्यों सदा रहत संग लागी जब भी आंसा तजी काया प्रेत प्रेत कर भागी ए बिद को व्यवहार बनियो है जा स्यों ने लगायो

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: बोले
0: देख तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे
1: गज की जकारा ने हाल जावे तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से मनु पावे
0: बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आदि सच

सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली।

एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावत वै चलावे जिव होवे फरमान ओह वेखे ओना नजर न आवे बहुता ए हो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वीस आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वीस एक दूजी बौ लख हो ही लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश एतरा ही पद पवड़िया चढ़िए हुई।

वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वै प्रसाद। चकर चिहन अर बरन जा तरपात नहिन जीह। रूप रंग अर रेख भेख कौ कह न सकत कीह। चल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित उज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। त्वै सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। पुजंग पर्यात छंद नमस्तुंग काले नमस्तुंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंगा भेखे नमस्तंगा लेखे नमस्तंगा काये नमस्तंगा जाये नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा नामे नमस्तंगा ठामे नमस्तंगा कर्मंग नमस्तंगा धर्मंग नमस्तंगा नामंग नमस्तंगा धामंग नमस्तंगा जीते नमस्तंगा पीते नमस्तंगा वाहे नमस्तंगा ठाहे नमस्तंगा नीले नमस्तंगा नादे नमस्तंगा शेदे नमस्तंगा गादे नमस्तंगा गंजे नमस्तंगा पंजे नमस्तंगा उदारे नमस्तंगा पारे नमस्तंग सोएकै नमस्तंगा नेकै नमस्तंगा भूते नमस्तंगा जूपे नमस्तंग नरकर्मे नमस्तंग नरभरमे नमस्तंग नरदेसे नमस्तंग नरपेसे नमस्तंग नरनामे नमस्तंग नरकामे नमस्तंग नरताते नमस्तंग नरकाते नमस्तंग नरतूते नमस्तंगा भूते नमस्तंगा लोके नमस्तंगा सोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंगा थापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंगा गाहे नमस्तंगा बाहे नमस्तंग त्रवर्गे नमस्तंगा सर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंगा रंगे नमस्तंगा पंगे नमस्तंगा गम्मे नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंगा जाते नमस्तंगा पाते नमस्तंगा मजबे नमस्तस्त अजबे अधी संगा देसे नमस्तंगा पीसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तंगा पीवै नमस्तंगा जनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंगा बरने नमस्तंगा मरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग करतारंग नमो सर्व तंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग नरसाके नमस्तंग नरबाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप है अनूप है जू है पू है लेख है पीख है नाम है काम है अधेय है अपेय है अजीत है पीत है त्रमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसलीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद। नमो सर्व मान्य समस्ती निधान्य नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगी नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे रूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जूर चाचरी छंद।
जले हैं, थले हैं, पीत हैं, पेय हैं, प्रभु हैं, जू हैं, देश हैं, पीस हैं, पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अवाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निधान्य नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपीसे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पीवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्व प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आदि उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरखो दार मूर्त अजोन आदि शेख द्वेषवार न पीस जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहू न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानतता ही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेवना जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जान ही केह जेव तात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चित्र चक मान पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जेह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्मताम सो परम रहत अपूत अलख अपीस अंग रागना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्थित एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते नपीख सर्वशास्त्र न जान ही जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नीत भाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आव ही बहु चित मद पार छंद त्वै प्रसाद गुणगन उदार महमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपहंग गतमत अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम आतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ्य चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चित्र चक्र करता चित्र चक्र हरता चित्र चक्र दान्य चित्र चक्र जान्य चित्र चक्र वर्ती चित्र चक्र परती चित्र चक्र पाले चित्र चक्र काले चित्र चक्र पासे चित्र चक्र वासे चित्र चक्र मान्य चित्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथिश अधिश अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते किया सुज दिस्य किया पिज पिस्य किया गंज कर्म किया पंज परम किया पिज लोकया किया दित सुख के वधूत वर्ण के विभूत करने के राजंग प्रवाह है कि धर्मंग तुजा है कि असोक वर्ण है कि सर्वा अपहरण के जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आदि अदेव है कि आप अपीव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रुजी रजाक्य रहीम रिहाक्य के पाक वैब है कि गैबुल गैब है कि अफबुल गुनाह है कि साहान साह है कि कारण कुरिंद है कि रोजी देहंद है कि राज करहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पिस है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु
ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪਿਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਨ ਹੈ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੰਗ ਫਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਅਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਅਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮ ਹੈ ਗਨੀਮ ਅਲ ਸਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਅਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦ ਅਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜ ਅਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜੂ ਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫ ਅਲ ਅਜੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਪੀਦ ਹੈ ਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜ ਅਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਪੀਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਅਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਅੰਗਾਧ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰਗ ਤ੍ਰਿਵਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਵਭਾਗੀ ਸੁਸਰਭਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸਦੈਵੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਗਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਸਰਪਟ ਛੰਦ ਤੁਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵੰਗ ਹੰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਅੰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਖਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਗਿਆਤਾ ਸਰਵੰਗ ਹਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਕਰਤਾ ਸਰਵੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਵੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਧਰਮੰ ਸਰਵੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਵੰਗ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤੁਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਥੰ ਪਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਸਤਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰੇ ਨਾ ਦਾਤੇ ਨਾ ਮਾਤੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਪਾਤੇ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਅਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤ ਅਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਉਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਸਿਕੰਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸ ਉਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਜਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤ ਉਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਉਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੀਸ ਉਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤ ਉਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੀਸ ਉਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੀਸ ਉਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨ ਉਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕ ਉਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਉਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਪਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਸਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਪਵ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਸਿਜ ਗਾਤ ਅਜਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤਿ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਵਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੁਇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਅਰਕਾਲੈ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਿਆ ਹੈ ਸਰਵੰਗ ਪਰ ਹੈ ਸਰਵੰਗ ਕਰ ਹੈ ਸਰਵ ਪਾਸਿਓ ਹੈ ਸਰਵ ਨਾਸਿਓ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਵਿਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ
ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर हैं, जपा जाप हैं, थपा थाप हैं, कृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, कृता कृत हैं, तरणी तरित हैं, अमृतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृतामृत हैं, निर्नायक हैं, खलकायक हैं, विशुंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात शांत, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, पुजांग प्रयात शांद, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासी, अगंजुल अनामे समस्तल निवासी, नृकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सुधर्मंग विपूते, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी, करी मुलक निंदा समस्तल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करी मुल रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते, दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये, सरावक सुध समूह सदान के, देख फिर कर जोग जती के, सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो, मत को न देखित प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रत्ती बन एक रत्ती के, मातिम तंग जरे जर संग, अनुपो तंग सुरंग सवार, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पावन के गौन को जात निवार, भारी भुजान के भूप पली बे दन्यावत, सीसन जात विचार, एते पहे तो कहा पय भूपत, अंत को नंगे ही पाए पदहारे, जीत फिर स्वदेश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गने नहीं जात विचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के ताम सुधारे, तीर्थ नान दया दमदान, सुसंजम नेम अनेक वसिख है, वेद पुराण कदेव कुरान, जमीन जमान सुभान के पिख है, पौन आहार जति जत तहार, सवै सुब चार हजार के देखे, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रती बिन एक न लिखे, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज स्नह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन, मातिम तंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, बीरा पार बड़े बरियार, अवचार है सार की तार पशैया, तूर्त देश मिलिंद मवासन, मातिक जान की मान मलैया, गाड़े गडान के तोड़न हार, सुबातन ही चकचार लवैया, साहिब श्री सब को सर नायक, जाचक अनेक सो एक दिवैया, दानव देव फनिंदन साचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाट जैत, तुन पापन के बह पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फरें, जग सतर स्वय अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजिंद्र निराधप, जौन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजादिक दान, अनेक सो अंबर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विसन सची पत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस है, भगते नर फेर न देह तरहेंगे, कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहे हो भगत ध्यान लगाए हो, नहात फिरियो लिए सात समुन्द्र, अनलोक गयो परलोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ कह, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हो सब ऐ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धरियो, सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पिछाह को शीस निवायो,
ਕੋ ਭੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਯੋ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰ

0: करे दिन रात,
1: बाहर पीछे अंतर मल माया,
0: सब सनाई काश करे छुपाए,
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान,
0: अंतर व्यापे लोभ स्वान,
1: अंतर अगन बाहर तन स्वान,
0: गल पाथर कैसे तरे अथा,
1: जाके अंतर बसे प्रभु आप,
0: नानक तेजन सह सुमार।

0: तरह संसार
1: जो तुम पाने तन प्रभु जाता
0: नानक अंजन जन परत
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आप है माने
1: आप है आप करतन बीरा
0: किसे दूर जनाब किसे बुझावत नेरा
1: आप सियानप सगल तेरह तू
0: साकर जाने आत्म की रह
1: जिस पावे तो सलई।

0: सात संग दुश्मन समीत
1: साधु के संग महापनी
0: सात संग किसी नहीं बैर
1: साग संग ना भी का बैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: सात संग जाने परमानंद
0: साध के संग ना ही होताप
1: साग के संग तजे सव्याप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबूता हुए
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बसता गोचर लहे
1: साधु के संग जा सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग मैल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु के करवान
0: साध के संग सब कुल उदार
1: साध संग साजन मेरी कुटुंब निस्तार
0: साधु के संग सूत अनुपावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राई करे सेवा
1: साध के संग सो बासर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गाए
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नान साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कश कहाल
1: दासन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सुहिला
1: साध संग बिशरत हर मेला
0: जो छे सो ही फल पावे
1: साध के संग ना व्यर्था जावे
0: और ब्रह्म साध रुद वसे
1: नानक उदरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाउ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर्प निस्तरे
0: साध के संग

0: परकास।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान।
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अपमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा।
0: मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जान पही।
0: नानक जिन प्रभ आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना।
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया।
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।
0: ब्रह्म ज्ञानी की देश अमृत वर्षी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
0: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल ज्योति।
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा खेर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ढाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब उपहार।

0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: जो वा नामे जपे को नाम
0: जो जो जपे तस की गत हुई
1: सा संग पावे जन को
0: कर कृपा अंतर उतारे
1: बस प्रेत मुदर पाथर को तारे
0: सर्व रूप का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गण गा
0: काहू जुगत कते न पाई धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तस नदरी आया
1: दास रांतन पाए तन पाए
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दर गए परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सोजी परे
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जगत नानक राम दास
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: तैसा हरख तैसा उस सुग
1: सदा नानता नहीं बियोग
0: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी वेखा।

0: कोट पंखी सर्प उपाय
1: कोट पाथर बिरक निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बसंतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दाने इंद्र से छत्र
0: सगल समग्री अपने सूर तार
1: नानक जे जिस भावे तिस निस्तार
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमर शास्त्र
0: कई कोट किए रत्न समुद्र
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे
0: कई कोट जक्ष किन्नर पिशाच
1: कई कोट पूज प्रे सुगर मरगा
0: सब ते नेरा सब होते दूर
1: नान का पलिप्त रहा परपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुर निवासी
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है
1: कई कोट भोजन ही फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाही
1: कई कोट काले थक पाए
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में चिंद
0: जह जह पहना तह तह राखी
1: नानक साक्ष प्राप्त के हाथ
0: कई कोट पहे बैरागी
1: राम नाम संग तिन लब लागी
0: कई कोट प्रभु को खोजंती
1: आत्म है पार ब्रह्म
0: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
1: दिन को मिले प्रभु अविनाश
0: कई कोट मांग है सत्संग
1: पार ब्रह्म ते लागा रंग
0: जिनका हुए आप सो प्रसन्न
1: नानक दे जन सदा तन तन
0: कई कोट खान

0: जगत बसया करे अहंकार
1: नारक स्वर्ग फिर फिर अवतार
0: अंधक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: को कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निर्भन आवे
0: सर्व की रीन जा का मन हुई
1: कौन अनेक ताके निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझ ती कछु हुई
1: तब इसको सुख नाही कोई
0: जब है जाने मैं किस करता
1: तब ला गर्व जोन मैं फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब ला नेचल नाही जी
0: जब लग मोह मगन संग माई
1: तब लग धर्म लाए देश जाए
0: प्रभु कृपा दे बंधन टूटे
1: सहस
0: कटे लख को उठता हुए
1: आवे माया पाछे बावे
0: अनेक भोग बिखिया के करे
1: तावे खब खब मरे
0: बिना संतोष नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ वृथे सब का
0: नाम रंग सर्व सुख हुई
1: मन भागी किसे

0: को उत्तम कर्मा
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहज सुभाई हो वैसो हुई
0: करने हार पहचाने सोए
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सत है सा दृष्टाना
1: जिसके उपज

0: कौन
1: बस आई तेरे संग राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पासे ती कर जाए
1: जिस वखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तजब मन लिहु मन मूल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेब संत है संग चार
0: अवर त्याग बिखिया जंजार
1: तन तन कहे सब कोई
0: मुख जल हर दर के सोई
1: इहवा पार विरलावा पार
0: नानक ताके सद बलिहारी
1: चरण साध के तोए तोए पियो
0: अर्प साध को अपना जी
1: साध की तूर करो इस नार
0: साधो पर जाए करवान
1: साध सेवा बड़ भागी पाई
0: सा संग हर कीर्तन गाए
1: अनेक विघ्न ते साधु राखे।

0: अपने सेवक की आप पत्रक है,
1: ताकि गतमत कोई न लाके,
0: प्रभु के सेवक को कू न पहुँचे,
1: प्रभु के सेवक उते उच्चे,
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेवक दय देश प्रगटाया,
0: नीकी कीरी महकल रखे,
1: पासम करेला स्कल को डलाके,
0: जिसका शासन काटत आ

0: आठ पहर प्रभ सह हजूरी मन मेरे तन की ओट ले
1: माता ने अपना दिन जान दे
0: जन जन अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सर्व तो का दाता
0: इसकी शरण सर्व सुख पाव है।

0: दृष्ट महासुख हुए,
1: अरस पावे बिरला कोई,
0: जिन क्या कैसे जंत्र बताने,
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने,
0: सुबर प्रे प्रेम रस रंग,
1: मुझे चाहो साध के संग,
0: परे शरण आन सब त्याग,
1: अंत प्रगास अंदन विलाग,
0: बड़ भागी जपिया प्रभु सोई,
1: नानक नाम रते सुखोए,
0: सेवक की मनसा पूरी पही,
1: सतगो ते निर्मल मतले,
0: जन को प्रभु होयो दयालु,
1: सेवा की नो सदा
0: न्याय, बंधन काट मुक्त जन पया,
1: जन्म मरण दुख प्रम गया,
0: इस पुण्य श्रद्धा सब पूरी,
1: राम रे आशा संग अजूरी,
0: जिसका साथ न लिया मिलाई,
1: नानक भक्ति नाम समाए,
0: सुख बिसरै जे काल न पहने,
1: सुख बिसरै जे की आ जाने,
0: सुख बिसरै जन सब कुछ दिया,
1: सुख बिसरै जे जीवन जिया,
0: सुख बिसरै जे अग्नि में रखे,
1: गुरु प्रसाद को बिला लाखे,
0: सुख बिसरै जे बिखते काटे,
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे,
0: गुरु पूरे तत एह बुझाया,
1: रब अपना नानक जानदया,
0: साजन संत करो यो काम,
1: अंत आप जपो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाव,
1: आप जपो अवरे नाम जपाव,
0: भगत पाए तर यह संसार,
1: बिन भक्ति तन हो सीसार।

0: ते होता। जब
1: धारी अपन सुन समाध
0: तब बैर विरोध के संग कमा,
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
0: तब हर के शोको किसे व्याप,
1: जब अपन आप पार ब्रह्म
0: तब मोह कहाँ के सोबत पर,
1: अपन खेल आप वर्तीजा
0: दान करने हार न दूजा,
1: तब होवत प्रभु केवल तनी
0: तब बंद मौत को किसको गनी,
1: जब एक है हर अगमा पार
0: तब नरक स्वर को कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई
0: तब सब कहो कित ठाई,
1: जब आप है आप अपनी जोत धर
0: कब निडर कब कद डरे,
1: अपन गलत आप करने हार
0: नानक ठाकर अगमा पार,
1: अपना शीर्षक अपन आसन
0: जन्म मरण को कहा बनासन,
1: जब पूर्ण करता प्रभु सोई
0: तब जम की त्रास को के सोए,
1: जब अवगत गोचर प्रभु एक
0: तब चित्र गोत के पूछ तले
1: आथ निरंजन गोचर अगाध।

0: गुण गाए।
1: मनन तर में श्वास कर मनिया,
0: कर्ण हार नानक एक जाने।
1: गण लागा हर एक नाई,
0: इसकी आसना मिलती जाए।
1: सेव को सेवा बन आई,
0: हुकम बोझ पर बदबाई।
1: इससे ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन में से अहंकार।
1: बंधन तोर पहे निर्वैर,
0: अंदर पूजे गुर के बैर।
1: लोक सुखी है परलोक सुहेली,
0: नानक हर प्रभु आपे मिले।
1: साथ संग मिल करो आनंद।

0: उस्तत करहु संत मीत
1: सावधान एकाग्रचित
0: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिसमान बसे सोतन दान
0: सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए
1: प्रदान पुरग पर सालो
0: सबते ऊच पाए स्थान
1: वरना होवे आवंजन
0: हरदन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम शांत हृदय नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तब जोग प्रवत्यान
1: ज्ञान श्रेण उत्तम स्नान।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी अपार मेहरामत बख्शिश कीती है गरीब निवास जी ने सच्चे पातशाह जी दे पवित्र सोहने चरणा पास बैठ के गुरबाणी पढ़न सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। धन्नवादी हाँ ज्ञानी हरविंदर सिंह जी गंगानगर वालियां दे जो लड़ीवार पावन गुरबाणी दी विचार दे नाल आप जी नूं कृतार्थ कर रहे सन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी रागी अति सत्कारयोग भाई कमलजीत सिंह जी रबाबी आप जी नूं अगले समय वास्ते गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। होईयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी जोड़ियां विच बिठाई रखना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चरण कमल निज आसन सिंहासन कै त्रिभुवन औत्रिकाल गमता प्रवीने हैं। चरण कमल रास गंध रूप शीतलता

चलियम न बात नू है इच्छा भारी, चलिए हम न बात नू इच्छा है भारी, चलिए हम न बात नू इच्छा है भारी।

परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन।

मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगै कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय ना किस की धरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भौ करिया उडे ऊड आवै सह कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया

तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जाम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

एक पढ़ै बहु सिमरित सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावै है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड अवर ना कोई तू जो

होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू

पंजवा भई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम।

करण कौ आज संगरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास ने वरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिया हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला।

जानै। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन

काल निकट नहि आहै। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारिहो, ताके ताप तनक महि हारिहो। रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भार पूरे

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरखै गुरु नानक लाई ते आई। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराऊं श्री हर आई। श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दया वै ताई। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु

ताई ज्यो चातरिक बूंदे रे कहो नानक जियाड़ा बलिहारी देहो दर्स प्रभ मेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।